0: displacement in the context of climate change is not about people moving from A to B. It's about loss.
1: Climate refugees. They've all lost something. Their homes, prospects, security. A global challenge that hits the most vulnerable the hardest. How do we all deal with it?
2: Ya no podía más, no soportaba más. Yo soy fuerte, soy una guerrera y para antes que va, decía yo.
1: Climate Refugees starts August 22nd on DW.
3: We've insured our cars, we've insured our phones. In fact, we've even insured athletes' legs. And now, for the first time, India is insuring something far stranger: daily wages during a heat wave. In theory, this sounds brilliant, but there are many questions. How hot is too hot? Who pays? Who decides it? And in a country where millions are exposed to extreme heat, who gets covered?
4: इतने गर्मी में हम बैठ के काम सिलाई करते हैं बहुत ज्यादा गर्म लगता है हम तो दो दो दो तीन तीन दिन बैठ ही नहीं पाते हैं कि कपड़ा सिलें जिससे करते हमारा दो पैसे का इनकम हो हमारा इनकम भी बंद हो जाता है
5: Shabnam works on her sewing machine in her one-story tin-roofed home in eastern Uttar Pradesh. The fan stays off. If it's running, the fabric won't stay still. So she works through the heat.
4: जैसे गर्मी में चक्कर आ जाता है, बीपी मेरा कम हो जाता है, कभी-कभी चक्कर सरदर्द होने लगता है। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती हैं। तो 6-7 घंटा जिस दिन काम कर लिए और गर्मी में इतना रह लिए तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। तो दो दिन नहीं जा पाते तो हमारा जो है दो दिन का इनकम तो नहीं मिलता है ना
5: Shabnam is one of hundreds of millions of informal workers in India who work without protection from extreme heat.